सोई पुरख सिवर साचा, जाका एक नाम अशल संसारे, जिन भगत पव जल तारे, सिमरो सोई नाम प्रधान, तित नाम रसक नानक लहना, थप्यो जिन सर्व सिद्धि, कवजन कल सबुद्धि, कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया, कीर्त रव किरण प्रगट संसार है, साख रोवर मवल सरा, उत्तर दक्षिण है पुभ अर पश्चिम, जय जय कार्ज पंथ नरा, हर नाम रसन गुरमुख बरदायो, उल्ट गंग पश्चिम तरिया, सोई नाम अशल भगत पवतारण, अमरदास गुर कौ फुरिया, सिमरै सोई नाम जख अर किन्नर, साधक सिद्ध समाध हरा, सिमरै नखेत्र अवर ध्रुव मंडल, नारदाद प्रहलाद वरा, ससियर अरसूर नाम उलास, सैल लो जिन उदरिया, सोई नाम अशल भगत पवतारण, अमरदास गुर कौ फुरिया, सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन, शिव सनकाद समुद्रिया, चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते, अमरीक भवजल तरिया, उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा, कल कबीर किलवख हरिया, सोई नाम अशल भगत पवतारण, अमरदास गुर कौ फुरिया, तित नाम लागते तीसते आवै, जति तपी सुर मन वसिया, सोई नाम सिमर गंगे पितामै, चरण चित अमृत रसिया, तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत, सतकर संगत उदरिया, सोई नाम अशल भगत पवतारण, अमरदास गुर कौ फुरिया, नाम कित संसार किरण रव सुर तर साख, उत्तर दक्षिण पुब देश पश्चिम जस पाख, जन्म ता हो सके अथ जित नाम हरदय निवास, सुर नर गण गंधर्व शे दर्शन आसास, पलो प्रसिद्ध तेजो तन कल जोड़ कर त्यायो, सोई नाम भगत पवजल हरण गुर अमरदास तह पायो, नाम ते आवै देवते तीस अरसाधक सिद्ध नर, नाम खंड ब्रह्मंड तारे, जह नाम समाधे हो हरक सोग सम कर सहारे, नाम सिरोमण सर्ब मैं भगत रहे लिवतार, सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार, सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन, गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज तुर धवल, तुजा सेत बैकुंठ बीणा, परसै संत प्यार जिह करतार है संजोग, सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तौ जोग, नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस, सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी, तन सतगुर सेवयो जिस पसाए गत अगम जानी, कुल संभू समुद्रे पायो नाम निवास, सक्यथ जन्म कलुचरै गुर परस्यो अमर परगास, बारज कर दाहण है सिद्ध सन मुख मुख जोवै, रिद बसै बावांग जो तीन लोकांतर मोहै, हृदय बसै अकहियो सोए रस्त नहीं जातो, मुखो भगत उचरै अमर गुर इत रंग रातो, मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो, परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो, चरण ता पर सके हथ चरण गुर अमर पवल रै, हाथ ता पर सके हथ हथ लगै गुर अमर पै, जी ता पर सके हथ जी गुर अमर पणिजै, नैण ता पर सके हथ नैण गुर अमर पखिजै, श्रवण ता पर सके हथ श्रवण गुर अमर सुनिजै, सक्यथ सो ही ओ जित ही बसै, गुर अमरदास नि जगत पित सक्यथ सो सिर जाल पपणै, जो सिर निवै गुर अमर नित, तिनार दुख नौ पुख तिनार ने तन नौ कहियै, तिनार शोक नौ हुवै।